0: शाबाश।
1: देशकै स्वादिलो रेडियो रेडियो अडियो एक कान दुई कान मैदान इसमें मजा।
2: एक कोने में तो बैठा जब मुझे वो दिखी थी।

0: कमेडी क्याप्सुल।
1: एकजना साथीले भन्यो, भर्खर भर्खर लभ परेको यार, क्या मनमा पनि कुछ कुछ होता है। मैले भने, हो सुरु सुरुमा लभ पर्दा चाहिँ कुछ कुछ होता है, बिहे पछि चाहिँ किच किच होता है।
0: कमेडी क्याप्सुल।
2: अडियो अडियो
3: एक कान दुई कान मैदान,
4: यसमै छ मजा।
5: फुल टाइम कमेडी।

0: कॉमेडी कैप्सूल।
1: हाँस्नु कि रुनु, बेरोजगार भएर होला कि लोभी पनि यतिसम्म भयो कि फ्रुटी खाँदा पनि चार पाँच चोटि टर टर नपारी बट्टा फाल्ने मन लाग्दैन।
0: कमेडी क्याप्सुल
2: एडियो ऑडियो एक कान दुई कान मैदान, यसमै छ मजा।
3: फुल टाइम कमेडी।

0: कमेडी क्याप्सुल।
1: एकजना साथीले भन्यो, भर्खर भर्खर लभ परेको यार, क्या मनमा पनि कुछ कुछ होता है। मैले भने, हो सुरु सुरुमा लभ पर्दा चाहिँ कुछ कुछ होता है, बिहे पछि चाहिँ किच किच होता है।
0: कमेडी क्याप्सुल।
2: अडियो अडियो
0: एक कान दुई कान मैदान,
2: यसमै छ मजा।
0: फुल टाइम कमेडी।

0: कॉमेडी कैप्सूल।
1: सर संता, इससे पहले कि हम अपनी मोबाइल कंपनी में आपको नौकरी दें, हम आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं। तो पहले ये बताइए कि सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है?
2: कार्टून नेटवर्क।
0: कॉमेडी कैप्सूल।
3: अडियो अडियो। एक कान दो कान मैदान। यस मैं छ मजा।
4: फुल टाइम कॉमेडी।

0: कॉमेडी कैप्सूल।
1: तुझे पता है बंता, नौकरों का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए।
2: भाई क्यों, क्या हुआ?
1: मैंने और मेरी बीवी ने प्यार करने का एक कोड रखा था। वो कोड था चलो चीनी खाएं, और ये कोड मेरे नौकर ने सुन लिया। एक दिन मेरा नौकर मेरी बेटी के साथ प्यार कर रहा था और मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया।
2: अच्छा, फिर तूने क्या कहा?
1: मैंने अपने नौकर को कहा, अबे साले ये क्या कर रहा है? मेरा नौकर कहता, चीनी खा रहा हूँ मालिक। मैंने उसे कहा, चीनी ही खानी थी तो खुली बोरी से खा लेता, नई बोरी खोलने की क्या जरूरत थी।
0: कॉमेडी कैप्सूल।
3: ऑडियो ऑडियो एक कान दो कान मैदान। यस मैच मजा
4: फुल टाइम कॉमेडी।

0: कॉमेडी कैप्सूल।
1: संता जी, आपका घर इतना दूर है कि मुझे 5 किलोमीटर दूर आना पड़ा आपका ये पार्सल पहुंचाने के लिए।
2: ओ पोस्टमैन जी, आप इतनी दूर क्यों आए? इससे अच्छा था कि आप इसे पोस्ट ही कर देते।
0: कॉमेडी कैप्सूल।
3: ऑडियो ऑडियो कांधे का मैदान। यस मैं छ मजा
4: फुल टाइम कॉमेडी।

सुनौता रेडियो अडियो देशकै स्वादिलो रेडियो रेडियो अडियो एक कान दुई कान मैदान यसमै छ मजा ए रात मकै रेडियो अडियो खुल्न पर्दैन।

0: कॉमेडी कैप्सूल।
1: पप्पू तुम हिस्ट्री में फेल क्यों हो गए?
2: पापा सभी क्वेश्चन उस टाइम के थे जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था।
0: कॉमेडी कैप्सूल।
3: अडियो अडियो
4: कान धोई कान मैदान।
5: यस मैं छ मजा
6: फुल टाइम कॉमेडी।

0: कॉमेडी कैप्सूल।
1: वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हुआ।
2: वर मांगो वत्स।
3: प्रभु जी, जैसा आप सोच रहे हैं मैं वैसा नहीं हूँ, मुझे वधु चाहिए।
0: कॉमेडी कैप्सूल।
4: अडियो अडियो। एक काम दो काम मैदान। यस मैं छ मजा।
5: फुल टाइम कॉमेडी।

0: कॉमेडी कैप्सूल।
1: उस लड़की का क्या हुआ जिसे तू प्रपोज मारने गया था?
2: ओए बंता, मैंने उसे प्रपोज मार दिया। मैंने उसे कहा कि मैं तुझसे शादी करना चाहता हूँ।
1: अच्छा, तो उसने क्या कहा?
2: वो बोली, मैं तेरे से एक साल बड़ी हूँ।
1: अच्छा, तो तूने क्या कहा?
2: मैंने कहा, कोई बात नहीं सोनिए, मैं तुझसे अगले साल शादी कर लूंगा।
0: कॉमेडी कैप्सूल।
3: एडियो ऑडियो। एक कान दो कान मैदान। यस मैच मजा।
4: फुल टाइम कॉमेडी।

0: तमेरी कैप्सूल।
1: डॉक्टर साहब, मैं सुसु 6 बजे करता हूँ और पॉटी 7 बजे करता हूँ।
2: अरे तो इसमें परेशानी की क्या बात है?
1: पर डॉक्टर साहब, मेरी आँख 8 बजे खुलती है।
0: तमेरी कैप्सूल।
3: अडियो अडियो। एक काम दो काम मैदान। यस मैं छ मजा।
4: फुल टाइम कॉमेडी।

0: सुहाउँछ
1: कमेडी क्याप्सुल
2: हैन के हो हजुरबा घाँस काट्न जान ए भन्दा रिसाउने नातिनी आज नाक काटेर गई
1: कमेडी क्याप्सुल
3: दियो दियो ए कान धोई कान मैदान यसमै छ मजा
4: फुल टाइम कमेडी।

0: कमेडी क्याप्सुल।
1: हैन के भौ ससुराबा,
2: म अल्छी भएर अल्छी गरे कि अल्छी गरेर चाहिँ अल्छी भए, खै के भयो के भयो।
0: कमेडी क्याप्सुल।
3: अडियो अडियो एक कान धोई कान मैदान, यसमै छ मजा।
4: फुल टाइम कमेडी।

0: कमेडी क्याप्सुल।
1: एकजना साथीले भन्यो, भर्खर भर्खर लभ परेको यार, क्या मनमा पनि कुछ कुछ होता है। मैले भने, हो सुरु सुरुमा लभ पर्दा चाहिँ कुछ कुछ होता है, बिहे पछि चाहिँ किच किच होता है।
0: कमेडी क्याप्सुल।
2: अडियो अडियो
3: एक काम दुई काम मैदान, यसमै छ मजा।
4: फुल टाइम कमेडी।

0: कॉमेडी कैप्सूल,
1: सात नजर बराबर एक मुस्कान, सात मुस्कान बराबर एक भेंट, एक भेंट बराबर एक किस, एक किस बराबर एक प्रपोज, सात प्रपोज बराबर एक विवाह, एक विवाह बराबर 7,777 समस्या।
0: कॉमेडी कैप्सूल
2: रेडियो ऑडियो
3: एक कान दो कान मैदान,
4: यसमै छ मजा,
5: फुल टाइम कॉमेडी।

0: कमेडी क्याप्सुल।
1: के भगन्ती मुला,
2: सुन न
1: भन न,
0: आज शिकार खेल्न जाँदा बाघले मसँग गफ गरे नि।
1: नचाहिने कुरा। अनि के भन्यो त बाघले?
0: मैले उतिर बन्दुक तेर्साए अनि बाघ त मजाले हाँसेर बिमाको कागज पो देखायो।
3: कमेडी क्याप्सुल।
4: एडियो एडियो एकान्दै कान मैदान, यसमै छ मजा।
5: फुल टाइम कमेडी।

0: कॉमेडी कैप्सूल
1: न माया न प्यार यहो कुरो न माया न प्यार न फ्रेंडशिप न प्यार गैर छ कुरो न माया न प्यार न फ्रेंडशिप न प्यार आजको यो देवदास को कुरा मान यार न चन्द्रमुखी न पारु सबै केटीलाई लाइन मार
0: कॉमेडी कैप्सूल
2: अडियो अडियो
3: एक कान दुई कान मैदान
2: यसमै छ मजा
3: फुल टाइम कॉमेडी

0: कॉमेडी कैप्सूल
1: ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार बाल गीत ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार तेरो गर्लफ्रेंड गई बजार उनलाई मिल्यो अर्कै को प्यार अब त घरमा बसेर झिंगा मार
0: कॉमेडी कैप्सूल
2: दियो दियो एक काम दुई काम मैदान यसमै छ मजा
3: फुल टाइम कॉमेडी।

0: कॉमेडी कैप्सूल।
1: दिल को पीड़ा दिल तोड़ने लायक ये था, दिल को पीड़ा दिल तोड़ने लायक के था, माया को रीत यो दुनिया लायक के था, कति गाह्रो हुन्छ केटी पट्याउन, त्यो घरमा बस्ने केटी को डियार लायक के था।
0: कॉमेडी कैप्सूल।
2: अडियो अडियो कान धोई कान मैदान, यसमै छ मजा।
3: फुल टाइम कॉमेडी।

0: भविष्य उज्जवल छ।
1: बोल्यो हरियो बोल्यो सुनिराख्नु है।
2: सुन नीलो आकाश चाहिन्छ नीलो नै। एक्सट्रीम एनर्जी एक्सट्रीम ऑन टेक एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक।